0: ये आशा, ये बोट, ये आशा।
1: राजू, राजू, अरे उड़ेम्बू सुड़ दे, राजू, राजू, वो लगे नल्ले जोरा रखे,

0: ये बोट कर चर्चे। आशा, सतीप, राहुल, रवि, ये बोट कर चर्चे। ओह, इधर ये बोट कर चर्चे। अब ये बोट कर चर्चे। इधर, ये बोट कर चर्चे।
1: राजू,
0: बोट कर चर्चे।
1: राजू, अब ये स्कूल बोट।
2: ये इंद्रे, टीचर कोच वांगा। इंद्रे, स्कूल पोगना। इंद्रे